हाँ फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ऐ कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर, 03003385569।
3: मेरा स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385699।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008 5569
2: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज़ सिंध की आवाज
3: मेहरापुर के हो तो आवाज़ भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ए औरतुन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 03011961851।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
5: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
6: अदा? दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803847।
7: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। जी एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दिफाई मुआदे ते सयूं कयूं आहिनि। दिफ़ाई मुआदो ज़ाहिर करे थो त विचो अगर मुतहद थी रहियो आहे ऐं इहे मुल्क असराइते नमूने पंहिंजो दिफ़ा करण जे क़ाबिल हूंदा आहिनि। पाकिस्तान, तुर्किया ऐं सऊदी अरब पारां 7 अगस्त ते मके दिफ़ाई मुआदे ते सयूं कयूं वयूं, जंहिं तहत कंहिं हिकु मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो सम्झो वेंदो।

पार्लियामेंटी अगवा जो मुशावरती इजलास अज कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार रियाज सादिक की सदारत हेठ थो तर्जुमान कौमी असेंबली का चवण है कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार रियाज सादिक इजलास अज चई वगे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। इजलास में कौमी असेंबली के 29 एजेंडा ए पार्लियामेंटी कार्रवाई बाबत मुशावरत कई वी। घरू वजारत के मातहत समूरन सरबराहन जो घरू वजीर मोहसिन नकवी की सदारत हेठ इजलास घरू वजारत के इदारन की कारकर्दगी बेहतर बनाने गडियल राबता मजबूत करण से गौर किया वो। मोहसिन नकवी है घरू वजारत जो कम बेन वजारतन का मुख्तलिफ गैर मामूली है। सभी इदारन के घुर्बल वसीला दींदी गड़ी एक बे के सपोर्ट कदी सभी इदारन जहा सरबराह डेटा ए साइबर सिक्योरिटी से असरायता गडियल कदम यकीनी बनाएन। शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस के जवाबदार की वरियत खिलाफ अपील से बुधड़ी वकील आगाही डी केस FIRs एक केस में मरहूम पुलिस एहलकार शाहिद हयात भरी थी चुको है बे केस में अपील है। अदालत वकील का पुछो तो फरियाद की मौत का संदस भाव अपील दाखिल करे सके तो वकील चयो तो अड़ो सवाल नकीबुला कत्ल केस में कयो वयो औलाद या बेवा के बदरा भाव पारा केस की पैरवी करण जो जवाज न है। अदालत बुधड़ी 6 अक्टूबर तीन मुलतवी कर छी। पटियारी वेझो जमीन के तकरार तां बिन धुरी में जेड़ो फायरिंग एक जणो कत्ल थे इतलाश शाहपुर थाने की हद KTN स्टाफ वट कोसा बिरादरी के बिन धुरी में जेड़ो थी पयो जेड़े दौरान फायरिंग के नतीजे में एक जणो कत्ल थे इतलाश लाश अस्पताल मुंतकिल थे। घोड़ा भरसाण जातल शख्स जो लाश हथाय गोट कूड़ो खा नबड़ो भरसा लाड़कानो बायपास वटा एक लाश हथाय है। पुलिस लाश जरूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कर छोड़ी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरा आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

मोरू, नौशहरो, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर, गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज़। जीए FM 88 नेटवर्क।

प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस भी जहाँ पे जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बेटर लेट देन एवर। अपनी गाड़ी और अपनी बस की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बदले खुदा खरीदिए थे मौजूदा और बदल के खुदा खरीदिए थे मछली। लोग हजारों साल और हमेशा जीत रहे हैं, और इसके अलावा जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ बेटर कर रहे हैं, विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेस। तो मेरी आवाज जिन दुनियाओं गुजारो, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखैर आगे लेजी आया नु सब बिस्मिल्लाह, बोंजोर शानी हाउ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, सारी बातें करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस गाने के साथ ही आपको बताएंगे आगे चल के हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: 10:30 a.m.
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: दिल में है वो कैसे जा तो कैसा तुझे प्यारा
1: ओके किसी को डेडिकेट करना है
2: जी
1: किसको डेडिकेट करना है
2: कालू कलाशारी अजी सोलंकी आई उनका पोए काठड़ी का गुलाम रतुल मरे अजी अजी दरबार
1: पे ओके थैंक यू सो मच बहुत सारा ख्याल रखना 03000134888 मेक श्योर आपका गाना रोने धोने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठीक है अच्छा सा गाना होना चाहिए ना रोने धोने वाला होना चाहिए ना कोई और कंटेंट होना चाहिए मतलब बॉलीवुड कंटेंट के अलावा कोई भी कंटेंट हो प्ले कर दूंगी ठीक है तो इस बात का खास ख्याल रखते हुए नेक्स्ट कॉलर हेलो
3: हेलो मैम
1: वालेकुम अस्सलाम सागर भाई कैसे ठीक ठाक अच्छा मुझे बताइएगा गाना लेकर आए हैं
3: लेकर तो नहीं आया जहन में है
1: जहन में है सुना दे फिर अच्छा सा होना चाहिए दुखी गाना नहीं होना चाहिए
3: नहीं बाबा दुखी नहीं सुनूंगा
1: ओके
3: okay. बदले चाहे बदलता चाहे तुम बचलता रहे मेरे प्यार का दिया जो भी चलता रहे मेरे प्यार का दिया रुत बदले चाहे मौसम बदलता रहे चाहे तुम पान चाहे बदलता रहे प्यार का दिया बलता रहे मेरे प्यार का दिया बलता रहे
1: ओके जी किसी को डेडिकेट करना है
3: नहीं किसी को डेडिकेट नहीं
1: चलिए ठीक है फिर रहा आपका गाना इसको सुनिए एंजॉय कीजिए

ओके जी, साथ साथ हम कॉलर्स को रिसीव करेंगे 03000113488 के ऊपर. एक और कॉलर, हेलो. ओके, हेलो हेलो. ओके जी, कोई है कोई नहीं है. ओके, कॉल भी ड्रॉप हो गई है. अब क्या किया जाए. वेरी बैड. एक और गाना प्ले करते हैं जी. गाने के साथ हम जाते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानब. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी कॉल्स को रिसीव करेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: GA Sakhar FM 88.
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नज़्द रेलवे लाइन, मेहरा।

0: पर राबते जिलाए आसिम हुसैन आरई 0307-35-92120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: चाहे उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है जी. सो नेक्स्ट कॉलर हम लेने जा रहे हैं एंड चेक करेंगे हम कॉलर कहाँ से मौजूद है हमारे साथ. हेलो.
1: वालेकुम सलाम.
0: वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. अच्छा मुझे बताएं कि कौन बात कर रहे हैं.
1: मैं बाजी अभी बोला सोलंकी बात कर रहा हूँ.
0: ओके तो मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे.
1: जी जी गाना सुनाऊंगा दादी. बिल्कुल सुनाऊंगा.
0: ओके सुना दे.
1: ये कलाम या मिट्टी हुक्म करे कैदार हुक्म करे हुक्म करे तो हुक्म करे कैदार हुकुम करे हुकुम करे हुकुम करे बाकी कलाम
0: ओके. थैंक यू सो मच. और थैंक यू सो मच. अपने बहुत सारा ख्याल रखे. अल्लाह हाफिज. 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग मुझे. सो कॉल कीजिएगा और कर रहे हैं आप लोग.

साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस जो कि मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, और नजीर खुसू और सरसद मौजूद है, नजीर खुसू के कमेंट आए हैं जी, अब तो रजाक हमें सुन रहे हैं, अब रजाक हमें कमेंट कर रहे हैं, मुनव्वर अब्बास हमें सुन रहे हैं लाहौर से, और मुनव्वर अब्बास लिखते हैं कि लाहौर से नाइस शो, थैंक यू सो मच, और इकबाल लाशारी हमें सुन रही है, अब्दुल रजाक वंस अगेन, एंड बस ये कमेंट्स है। अच्छा हाँ, हम कॉल्स ले रहे थे, नेक्स्ट कॉलर हम रिसीव करेंगे 03000113488 के ऊपर।

आगे साथ साथ आज का जो टंग ट्विस्टर है वो आपसे शेयर करती जाती हूँ जी। आज का टंग ट्विस्टर ये है कि बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए, ठीक है। बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए, ठीक है जी। तो आज का टंग ट्विस्टर है बेसे, ठीक है। तो ये टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखाएंगे, और जब जो बंदा ज्यादा ज्यादा अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर बोलेगा वो विन करेगा हमारे इस सेगमेंट को। सो आप जरूर देखें, आप प्रैक्टिस करें एंड देन कॉल पे आए और फिर टंग ट्विस्टर बोलिए, ठीक है। हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई
3: दिफाई मुआहिदो ज़ाहिर करे तो विचोबर मुतहद थी रो है उहे मुल्क सराइते नमूने पंहिंजी दिफ़ा करण जे क़ाबिल हूंदा आहिनि। पाकिस्तान तुर्की ऐं सऊदी अरब पारां 7 अगस्त ते मके दिफ़ाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं वयूं, जंहिं तहत कंहिं हिकु मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो सम्झो वेंदो।

अमेरिकी सदर जी मके दिफाई मुआदे की हिमायत वजीर आजम पारा ट्रंप की वाखाण वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो आहे त मके गरियल दिफाई मुआदे ते अमेरिकी सदर के लफ्जन की वाखाण कया तो सऊदी अरब ए तुर्की सां गॾिजी पाकिस्तान पंहिंजो ऐं खिते जो दिफा यकीनी बणाइण में किरदार अदा कंदो रहंदो ॾखण एशिया में एटमी तबाही जो खतरो टारण ते ट्रंप के भेटा पेश कया तो अमून अवाम की रोशन मुस्तक़बिल ज़रूरी ऐं बुनियादी शर्त आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान खिलाफ़ कार्रवाइयूं जारी वधीक ब दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूदु बलूचिस्तान जे इलाइक़े पुलिस ज़ाइक में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन दौरान ब दहशतगर्द मारिजी विया टे ज़ख़्मी थिया मारिजी वियल हिकु दहशतगर्दी सुञाणप मुश्ताक अहमद उर्फ़ को यार जे नाले सां थी आहे दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां मैगज़ीन दस्ती बम ऐं आई ए डी ठाहिण जो सामान पिणु हथु कयो वियो आहे।

अमेरिकी सदर जो दक्षिण कोरिया से फौजी मशकू महदूद करण जो ऐलान। अमेरिकी सदर चयो त सुठल लागापन सबब गडियल फौजी मशकन में घटताई चाहें तो। ट्रंप दिफा वाले वजीर के दक्षिण से कोरिया से मशकू महदूद करण ला हिदायत दई छी। पार्लियामेंट अगवाणन जो मुशावरती इजलास अज कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत हेठ थी। तर्जुमान कौमी असेंबली जो चवण है तो कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास चई वगे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। इजलास में कौमी असेंबली के 29 एजेंडा ए पार्लियामेंटी कार्रवाई बाबत मुशावरत कई वेंदी। घरू वजारत के मातहत समूरन सरबराहन के घरू वजीर मोहसिन नकवी की सदारत हेठ इजलास। घरू वजारत के इदार की कारकर्दगी बेहतर बनाने गडियल राबता मजबूत करण से गौर। मोहसिन नकवी है तो घरू वजारत जो कम बेन वजारत का मुख्तलिफ है गैर मामूली है। सभी इदार के घुर्बर वसीला दींदी गजी एक बे के सपोर्ट कदी। सभी इदार सरबराह डेटा ए साइबर सिक्योरिटी से असरायता गडियल कदम यकीनी बनाए। शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस के जवाबदार की बरियत खिलाफ अपीलन से बुधनी वकील आगाही दिनी त केस जो FIR एक केस में मरहूम पुलिस एहलकार शाहिद हयात बरी थी चुको है। बे केस में अपील है। अदालत वकील का पुछो तो फरियादी के मौत का संदस भाव अपील दाखिल करे सके तो। वकील चयो त अड़ो सवार नकीबुला कत्ल केस में कयो वयो हो। औलाद या बेवा के बदरा भाव पारा केस की पैरवी करण जो जवाज ना है। अदालत बुधनी 6 अक्टूबर तई मुलतवी करी।

0: असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-005569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. एंड आप मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल करने के लिए. हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल की जा सकती है. सो आप लोग कॉल कीजिए. और आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग मुझे बताएंगे बबलू ने, नहीं कहे के दिखाएंगे कि बबलू ने भुने बादाम भरी बोरी में, मेरा भी गलत हो गया सॉरी, बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. ठीक है, ये कहना है बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए, है ना. बहुत उलझा देने वाला टंग टेस्टर है. अब देखते हैं कि आज के टंग टेस्टर कौन कह पाता है. हेलो, ओके, हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन कहां से?
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन कहां से?
1: जीएम बलोच.
0: जीएम बलोच भाई, कैसे ठीक ठाक?
1: अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं.
0: मैं बहुत अच्छी. मुझे बताएं टंग टेस्टर सुना?
1: टंग टेस्टर सुना, लेकिन मसला ये कि मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ. जब तक ये मेरा फॉल्ट सही नहीं होगा ना, मैं आपसे बात नहीं कर सकता.
0: क्या सही नहीं होगा?
1: मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये मेरी वॉइस मैं खुद सुन रहा हूँ अपनी. ठीक है ना, जब तक ये फॉल्ट सही नहीं होगा, मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ कि आप, मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ.
0: अच्छा, मतलब आपको आवाज वापस आ रही है आपकी, तो ये नेटवर्क का इशू, इसमें हमारा क्या कसूर है?
1: देखें, आप उसको एक बार ऑफ एयर करें, इसको ऑन एयर ना करें. ऑफ एयर में मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज मुझे सुनाई देती है या नहीं. अगर नहीं सुनाई देती है तो आपकी तरफ से फॉल्ट है, क्योंकि जब तक आप इसको ऑन करते हो ना ये हेडफोन को, तो ये मेरी आवाज मुझे डबलिंग में आती है.
0: अच्छा, अब इशू क्या है आपको? आपने मतलब ये शिकायत कर ली, उसके बाद और कुछ कहेंगे?
1: नहीं, सुने प्रोग्राम को मैं डेली सुनता हूँ.
0: हाँ,
1: तो बहुत ज्यादा काम कर मेरी कॉल भी जाती है
0: जी,
1: लेकिन है ना, मैं उसको ना डिस्कनेक्ट कर देता हूँ. मुझे पता है कि मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ,
0: लेकिन बात तो हो जाती है ना. अगर आपको आवाज डबल आ रही है, नहीं अगर आपको डबल आ रही है तो बाकी लिसनर्स पे ये कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डबल आवाज आ रही है. सो हो सकता है कि नेटवर्क का कोई इशू हो, या कोई हेडफोन्स वगैरह, या फिर कोई फोन का इशू भी हो सकता है.
1: सो मैं आपको बताऊं,
0: कोई बात नहीं,
1: जितने भी नेटवर्क है ना, किसी में कोई शिकायत नहीं, मैं सब में कॉल करता हूँ. ठीक है ना, फिर सखर नेटवर्क ऐसा है जिसमें मेरे को डर लगता है ना. मैं आपको कॉल कर सकता हूँ ना, आपको
0: चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अगर मैं इस कन्वर्सेशन में जरा आगे गई तो एक तो सेगमेंट का टाइम चला जाएगा, एंड दूसरा फिर ये जो आपको मतलब इतनी कोई ज्यादा कोई शिकायत है तो आप बस फिर सुने, आप फिर कॉल ना करें, यही कह सकती हूँ मैं. थैंक यू सो मच भाई आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया. आप मुझे डेली सुनते भी हैं, लेकिन कॉल के बारे में जो आप बता रहे हैं कि आपका आवाज आपकी वापस आती है, तो हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो, कोई हेडफोन्स लगाने का इशू, या कोई फोन में भी इशू हो सकता है कि आप किस फोन से कॉल मिला रहे हैं या किस जगह पे जाके ऐसी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ आजकल नेटवर्क के इशूज हैं, और हो सकता है कि ऐसा ही हो. ठीक है, क्योंकि अगर आपको आ रही है तो बाकी लिसनर्स को भी आनी चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट कॉल है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: सरदार कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे बताओ सरदार, के टंग ट्विस्टर सुना है आपने?
2: बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे
0: में भरकर बंद बॉक्स
2: में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम भरकर बंद बॉक्स में बंद.
0: वाओ, क्या क्या मतलब क्या स्पीड है, और क्या कैसे फ्लो में जा रही हो, क्या बात है. माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ, अच्छी अच्छी खासी चीजों को ना नजर बड़ी जल्दी लगती है, तो माशाल्लाह कह देना चाहिए, है ना सरदार?
2: آپ کی آواز
0: آواز آ رہی ہے. اچھا کچھ اور کہنا ہے سر درد؟ تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھو اپنا, اللہ حافظ. اور یہ کیا آ گیا؟ خیر جو بھی آیا 03000113488 جس کے اوپر کال کی جا سکتی ہے, جو کہ آپ لوگ کر رہی ہیں. نیکسٹ کالر ہے وہ. ہیلو, وعلیکم السلام. اوکے, سلام کرتے ساتھ ہی کال چلی گئی ہے پانی میں. ایک اور کال لے کر آئیں گے پانی سے اوپر. ہیلو, وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ کون سفدر بلوچ مورو سے؟ کیسے بھائی, ٹھیک ٹھاک؟
3: الحمدللہ
0: میں بہت اچھی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ ٹنگ ٹوسٹر بولیں گے؟ بول دیں, مشکل ہے. چلیں پھر, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ. یہ سیگمنٹ انہیں لوگوں کے لیے جو ٹنگ ٹوسٹر بولیں گے. اینڈ نیکسٹ کالر ہم دیکھیں گے کون ہے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کال ڈراپ ہو رہی ہے. ویری بیڈ, نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری آواز کو. خیر ہم گانا سنیں گے, گانا انجوائے کریں گے. گانا میں پلے کرنے جا رہی ہوں فور دا ویری فرسٹ ٹائم بائی نصرت فتح علی خان. سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے.

0: It's 12:30 PM.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिकर छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000272734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तीन मरीज।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9198-51
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे
1: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
3: ऑफिस जीअं मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

साथ साथ आगे चलेंगे. अच्छा, हमें मैसेजेस बहुत सारे लोगों ने कर दिए हैं, हमें मैसेज कर दिया है जी. अल्लाह रखियो मेमन ने, अल्लाह रखियो मेमन कहते हैं कि जी. और मेरे बेटे मुर्शीद अली, सनाउला अताउला अली विंदा अली शेर और मोहम्मद हुसैन मेमन और क्यूट बेटी फातिमा बतूल एंड सईदा बतूल फॉर्म लाखाना सदरा मुस्कान को सलाम देते हैं और कहते हैं शो बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रही है. सो प्लीज मुरीद अब्बास का सॉन्ग प्ले कर दें. ओके ठीक है, मुरीद अब्बास का सॉन्ग सर्च करना पड़ेगा. अच्छा, हमेशा की तरह सफदर बलोच हमें मैसेज कर रहे हैं. जी सफदर बलोच लिखते हैं कि शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है. थैंक यू.

देखा था मैंने। और सरसर जी शब्द बलोच ने बहुत सारे शेर फेंक दिए हैं, थैंक यू सो मच शेर फेंकने के लिए। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम सिंध की आवाज़, आरजे कैसी हो आप, सलामत रहें। हमेशा आपकी आवाज तो आती है मोबाइल पे, मेरी नहीं आती क्यों? आज भी थर्सडे की तरह। अच्छा कौन है आप? वही जो कॉल पे आए थे वही हैं आप या कोई और है? नाम तो लिख दिया करें ना।

भगवान से गहन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजरा है मुझे कहते हैं आज ये रुखसार लास्ट लिंक में वापस आ चुकी है जी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है यानी कि वक्त का मुकाबला सख्त हो रहा है।

0: साथ साथ हम चलते हैं जी आगे और शो की बहुत सारी कॉल्स हम रिसीव करेंगे 03000993488 के ऊपर. लास्ट लकी कॉलर्स भी लेंगे और चेक करेंगे कि कौन है कहाँ से. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर. पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर. अरे इस दिल में और कौन है, मेहमा तुम ही दो.
0: अरे वाह,
1: अपने अल्ताफ बलो जाग जाने का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: मशर की तशनगी से क्या खौफ है अल्ताफ, कौसर का जाम देगा मुझको इमाम मेरा. लोगो साहेब हुस्न की आमद है इंतजार, बाकी का सबक है जाने कौसर से प्यार करो. अरे शिकवा शिकायत की जाने मन आदत नहीं मुझे, शिकवा शिकायत की जाने मन आदत नहीं मुझे. ये इल्जाम देकर न दीवाने को दार दार करो. मैं खाने से तेरे दर तक है मेरी मंजिल, तुम जो चाहो वही रास्ता अख्तियार करो. अरे हुदू के रूबर, अरे हुदू के रूबर उन्हें अपने अल्ताफ को शर्मसार करो. अरे कुछ भी न सही, अरे कुछ भी न सही, मेरी सदाकत का तो इतबार करो.
0: वाह क्या बात.
1: अल्लाह आपको अपने इज्जत में रखे, सल्तन पाक के साए में रहे और जो न मांगो वो आपको मिल जाए. मदीने वाली सरकार.
0: आमीन सुम्मा आमीन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. बहुत खूबसूरत दुआ और बहुत खूबसूरत बात. तो क्या बात है जी, क्या बात है. एंड इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम भी जा रहा है इख्तिताम की तरफ. और लास्ट में हमें मैसेज रिसीव हुआ है, गुड आफ्टरनून शो इज नाइस, यू हैव टू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग. ग्रीन बलोच मुलू खास से थैंक यू भाई. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज आपको, ठीक है, क्योंकि मैं अल्लाह हाफिज करने वाली हूँ. और इसके अलावा इकबाल लाशारी हम सुन रहे हैं, गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं. और रुखसार क्या हाल है आपका, शो में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि मैं स्कूल पढ़ाई चल रही है और मामू की शादी है. तो टाइम का पता ही नहीं चलता. और सिंधी शेरू प्ले करो मीरपुर खास से रुखसार मरी. थैंक यू सो मच रुखसार मरी, आपने हमें ज्वाइन किया. तो वहीं लास्ट मिलेंगे आपसे इजाजत और इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटकार होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा. जिंदगी गुजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइन आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: सिंध की आवाज
1: GAFM नेट ATN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई

सरदार दरबन जी वाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद 28 महीनों दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जन में 16,760 अरब ए परे कर्ज में 2,060 अरब रुपये की बात थी। जून 2026 तीन वफाकी हुकूमत जो मजमू कर्ज 83,645 अरब रुपये तक पहुंची है।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मके घर इल्तिफाई मुआदे की आजियां कर छी। डोनाल्ड ट्रंप है खेस यो ऐसी खुशी थी है पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया पारा दिफाई मुआदे से सहयू क्यों हैं। दिफाई मुआदो जाहिर करे तो विच ओभर मुतहद थी रो है ये मुल्क असरायती नमूने पेंो दिफा करण के काबिल हूँ। पाकिस्तान तुर्किया सऊदी अरब पारा 7 अगस्त के मके दिफाई मुआदे से सहयू क्यों हुई जैं तहत कें एक मुल्क से हमलो टिन्हीं मुल्क से हमलो समझो वो। अमेरिकी सदर के मके दिफाई मुआदे की हिमायत से वजीर आजम पारा ट्रंप की वाखाण। वजीर आजम शहबाज शरीफ है मके गरियल दिफाई मुआदे से अमेरिकी सदर के लफ्जन की वाखाण कया तो सऊदी अरब ए तुर्की से गड़ी पाकिस्तान पेंो ए खिते जो दिफा यकीनी बनाने में किरदार अदा कर रो। दक्षिण एशिया में एटमी तबाही जो खतरो उतारण से ट्रंप के भेटा पेश कया तो अमुन आवाम की रोशन मुस्तकबिल जरूरी ए बुनियादी शर्त है। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान खिलाफ कार्रवाई जारी दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिए मौजूद बलूचिस्तान के इलाके जायक में गुझी इतलात ऑपरेशन दौरान ब दहशतगर्द मार टे जख्मी थे मार एक दहशतगर्द की सुणप मुश्ताक अहमद उर्फ को यार के नाले से थी है। दहशतगर्द के कब्जे में मैगजीन दस्ती बम ए IED ठाण जो सामान पिण हथ किया है। अमेरिकी सदर जो दक्षिण कोरिया से फौजी मशकों महदूद करण जो ऐलान। अमेरिकी सदर कम जोंग से सुठन लागापन सबब गरियल फौजी मशकन में घटताई चाहें तो ट्रंप दिफा वारे वजीर के दक्षिण से कोरिया से मशकों महदूद करण ला हिदायत दई छी। पार्लियामेंट अगवाण के मुशावरत इजलास अज कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार आया सादिक की सदारत हेठ तर्जमान कौमी असेंबली चवण है तो कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार आया सादिक इजलास अज 4 वगे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। इजलास में कौमी असेंबली के 30 एजेंडा ए पार्लियामेंट कार्रवाई बाबत मुशावरत कई वी। घरू वजारत के महातेब समूरन सरबराहन जो घरू वजीर मोहसिन नकवी की सदारत हेठ इजलास। घरू वजारत के इदार की कारकर्दगी बेहतर बनाने है गड़ियल राबता मजबूत करण से गौर। मोहसिन नकवी है तो घरू वजारत जो कम बेन वजारत का मुख्तलिफ ए गैर मामूली है। सभी इदार के घुर्बल वसीला दींदी गड़ी एक बे के सपोर्ट कदी सभी इदार जहा सरबराह डेटा ए साइबर सिक्योरिटी असरायता गड़ियल कदम यकीनी बनाए।

मटियारी वेझो जमीन के तकरार तां बिन धुरिन में जेड़ो फायरिंग एक जणो कतल शारदपुर थाने के हद केटी स्टाफ वट कोसा बरादरी के बिन धुरिन में जेड़ो थी पयो जेड़े दौरान फायरिंग के नतीजे में एक बहा फोसो मारजी वयो लाश अस्पताल मुंतकिल कई वई।

0: भान सैदाबाद लग झांगारा में पीण के पानी जो बोहरान संगीन समय मानन जो धरणो झांगारा एक्शन कमेटी के सर से समय गोठाणन सेवण झांगारा रोड से धरणो हो गोठाणन जो चवण है कुदरती वसीलन से मालामाल होने बावजूद झांगारा वासी पानी ला तड़पी रहा है। करोड़ों रुपये की लागत से मंजूर थे आरओ प्लांट के यूसी चेयरमैन हलण लाइ तैयार ना है। टिन दिन अंदर पानी की खोर खत्म न कई वही तो इंडस हाईवे से धरणो हणंदी। दड़ो के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर दवाओं और बुनियादी सहूलत की खोट खिलाफ एहतजाज जारी है। सियासी समाजी अगवाणन पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों के वारसन एहतजाज मुजाहरो किया। अगवाणन का चवण है अस्पताल का इंतजाम पीपीएचआई हवाले थे अस्पताल में सहूलत की खोट पैदा की गई है। गरीब मानू इलाज लाए परेशान हैं। अस्पताल में डॉक्टर दवाओं की खोट खत्म कई है। दादू अस्पताल जीएमएस के किरदार कशी करण से अदालत पारा जवाबदार से 50 लाख दंड। एडिशनल सेशन जज दादू के अदालत जवाबदार के मुख्तार जतोई के 50 लाख दंड की सजा बुधाए छी। डॉक्टर अमजद मस्तोई अदालत में शिकायत साइबर क्राइम तहत पटिशन दाखिल कराया है।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब चलती का नाम मस्ती, आगे सिद्धराव के साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन कौन है मुझे बताने के लिए, और इस प्रोग्राम का ऐसा बनने के लिए आप क्या करेंगे जनाब, बताते हैं सब कुछ बताते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप आज के प्रोग्राम का टॉपिक जान लें तो वो क्या होने वाला है वो जरा सबसे पहले बता लेते हैं। ओके जी, तो आज है जनाब मंडे, मंडे का दिन है और मंडे का दिन ऐसा समझ लें कि जब भी आता है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं कि भाई ये सारे काम तो हमें मंडे वाले दिन ही करने होते हैं। ऑफिस जो हैं उनका पहला दिन होता है, या फिर बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये मंडे क्यों ही आखिर आता है हमारी जिंदगी में। तो आज मंडे है तो उस हिसाब से मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों से एक सवाल पूछ लिया जाए और आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मंडे, मंडे के बारे में एक आपने लाइन बोलनी है जो कि आपको लगता है कि ये लाइन जो है ना मंडे के ऊपर बिल्कुल फिट करती है, और अगर मंडे के हिसाब से देखा जाए तो मंडे के हिसाब से बहुत सारे लोग जो है ना मंडे से पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, और मंडे देखा जाए तो भाई थोड़ा बहुत से नफरत के लायक भी है ऑफिस के हिसाब से देखा जाए, स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो बेचारा मंडे बहुत ही ज्यादा जो है ना वो बदनाम भी हो चुका है, और बहुत ही ज्यादा ऐसा वाला सीन बन चुका है कि मंडे बेचारे को हर वक्त जो है ना वो लोग कहते रहते कि भाई मंडे तुम क्यों ही आते हो। तो आज बिल्कुल आपने ऐसा करना है, मंडे के लिए कोई एक ऐसा जुमला बताना है, एक ऐसा जुमला बोलना है जो कि आपको लगता है कि ये तो भाई मेरे हिसाब से मंडे के लिए परफेक्ट है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं और फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारा प्रोग्राम जो है ना वो वहां पर लाइव मिल जाएगा, और पेज को आपने जल्दी से जो है ना वो फॉलो कर लेना है, और बिल्कुल आइए वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। और मैंने आज आप लोगों से पूछ लिया कि आप मुझे बताएंगे कि एक ऐसा जुमला बोलें जो आपको लगता है कि ये मंडे भाई साहब के लिए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, मंडे को क्यों लोगों ने इतना बदनाम किया हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये जो बदनामी मंडे ने झेल रखी है सहता आ रहा है वाकई सही भी है या नहीं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए, आपके मैसेजेस जो कि मुझे 888 और फेसबुक पर मिलते जा रहे हैं, बिल्कुल जी शामिल प्रोग्राम होते जाइए। और यहाँ पर टाइम हुआ जाता है हम जरा जाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते, आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जा कर यूं वापस आते हैं, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, जल्दी का नाम मस्ती, आपका हमारा साथ पूरी पूरे 3 बजे तक।
1: It's one.
2: खबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 खां शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतुन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर छंछर ते सुबुह 9 खां शाम जो 5।

आप यकीन जाने आपकी जिंदगी जो ना वो बेरंग हो जाती है। वैसे भी कहते हैं कि अपनी जिंदगी में रंग भरने का अख्तियार आप किसी को भी ना दें। हो सकता है जिसको आप ये अख्तियार दे रहे हैं उसके पास सिर्फ काले रंग के अलावा और कोई रंग ही ना हो। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी जिंदगी में जो रंग भरने ना, तो वो आप अपने हिसाब से भरा करें, किसी और को ये अख्तियार हरगिज ना दें। और इसी के साथ साथ आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश किया करें। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और शाम के प्रोग्राम भी हो चुके हैं, तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर शामिल होकर अपने होने का एहसास दिलाएंगे। अच्छा, तो मैंने आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं, मंडे जनाब के लिए कोई एक ऐसा आपने जुमला बोलना है। मंडे जो है ना, हमेशा बचपन से लेकर मंडे के लिए हमारे दिल में एक अलग सी नफरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, स्कूल से लेकर मतलब ऐसा वाला सीन है कि मंडे बेचारा, भाई ये है कि मंडे बेचारे से बड़ी नफरत है। तो आपने आज ऐसा एक जुमला बोलना है, एक ऐसा सेंटेंस बोलना है जो आपको लगता है कि ये मंडे के लिए परफेक्ट है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे। ओके जी, तो बहुत से तवाली बातें करेंगे आप लोगों के साथ साथ, और कुछ बातें वाकई ऐसी होती हैं जो शायद हम किसी को कह नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जैसे हम अपनी वो बातें बता सके, ताकि हमें फिर ये एहसास हो सके कि हमारे पास भी कोई ऐसा इंसान है जिसे हम खुलकर अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं।

दमन होते हैं. और इसीलिए अगर आप किसी से बिल्कुल मुखलिसी से प्यार करते हैं, सच्चे, आप उसके साथ बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन उसने आपकी कदर नहीं करी, उसने जाकर दूसरे लोगों से दोस्तियां बना ली, रिश्तेदारियां बना ली, तो सोचिए वो इंसान जैसा है उसे मुखलिसी रास नहीं आएगी और वो अपने जैसों में जाकर मुतमिन रहेगा. तो छोड़ दें इसे इंसानों को और जरा इंसानों के पीछे रोना धोना ये छोड़ दिया करें, क्योंकि एक इंसान कभी भी आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रह सकता. तो जनाब आप अपनी जिंदगी के हिसाब से खुश रहना, जो है ना वो देखें कि आपने कैसे अपनी जिंदगी में खुश रहना. और टॉपिक को लाजमी जो है ना वो फॉलो कीजिएगा. मैं आज जानना चाहती हूँ क्योंकि हमारे बचपन की बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो कि भाई मंडे के साथ जुड़ी हुई हैं. और मंडे जनाब जो है ना वो हर किसी के दिल में एक ऐसा अलग सा मकाम बना चुका है अपना, कि जब भी मंडे का सोचते हैं, चाहे हम मतलब कोई भी काम ना करें, कोई भी काम नहीं करते, ना स्कूल जाते हैं, ना कोई जॉब करते हैं, ना ही कोई हमारा ऐसा कोई काम है, लेकिन फिर भी मंडे के लिए जो हमारे दिल में है ना कि भाई मंडे ने हमारा पूरा बचपन जो है वो खराब कर दिया था, ये चीज हम कभी नहीं भूल सकते. एक बचपन वाला ट्रॉमा जो है ना वो मिला हुआ है हमें मंडे जनाब से. तो आप बताएं कोई ऐसा जुमला जो कि आपको लगता है ये मंडे के लिए परफेक्ट होने वाला है. जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनिए. और उसके अलावा मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा गाना मौजूद है, तो हम एक प्यारा सा गाना यहाँ पर आप लोगों के लिए लगा देते हैं. अच्छा, मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम धीरे धीरे जो है ना वो थोड़ा अच्छा होता जा रहा है. वैसे भी वो वाली बात है ना, एक ही चीज हमेशा थोड़ी ना टिकती है, तो गर्मियां हो या सर्दियां हो हमेशा थोड़ी ना टिकेगी. मौसम अच्छा हो चुका है, रात के टाइम तो क्या ही बात है.

हाँ जी शहजादी, ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए जरा। मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। रिहाना खान हमें सुन रही हैं बखर से। रिहाना आपको वेलकम कहा जाता है। वासु भाई की तेदी से डो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम ने बोले अस्सलाम बदर कहते केड़ा हाल है, खुशियां चाक चकी भली सब फा मजे में ताव दा किया है। रिहाना कहती है अस्सलाम वालेकुम, मैं रिहाना खान बखर से, वेलकम टू यू। आपको भी वेलकम कहती रिहाना। हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। एंजल सिस्टर आप कैसी है, सब फा मजे में ताव दा। उनके अलावा यूनिस खोड़ो हमारे साथ कहती है अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यूनिस खोड़ो गोठ दौलत खान से गड्डा कहते असान त तुझे खातिर सदी दुनिया वे सारी छड़ी, पर खबर ना है तू कहजे करे असान के वे सारे छड़ियो। वाह वाह। बिल्कुल सही लाकिन जी शहजादी गुम थी वे लबे ता देखे बुदाई से जोस।

वैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, अगर हम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक इंसान जो है ना वो उसका तस्वीर आ जाता है. कोई सैड गाना हो, कोई अच्छा गाना हो, कोई रोमांटिक गाना हो, तो हमारे जहन में एक इंसान जो है ना वो जरूर उस गाने के साथ जो है ना वो ऐसे माइंड में घूम रहा होता है. तो ये शहजादी गाना सुनकर आपको कौन सी शहजादी याद आ गई? क्या बात है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा गाना हमने एंजॉय किया. अच्छा, फेसबुक वाले जो लोग हैं वो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए जरा, और बताइए कौन कौन हमारे साथ मौजूद है. एक और ब्यूटीफुल सा गाना हमारी लिस्ट में है. आज मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को थोड़े से ओल्डी जो गाने ना, सिंधी वाले ओल्डी गाने वो सुनाते हैं, क्योंकि इनका अलग ही स्वैग है. सादिया अली हमारे साथ है. कितनी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हाय, आप ही आप कैसी हैं? आई होप यू आर फाइन. यस, मूसा कोरी हमारे साथ मौजूद है. मूसा कोरी भाई वालेकुम अस्सलाम. और निदड़ी आ चुकी हैं, अस्सलाम वालेकुम प्यारी आरजे, वेलकम टू शो. मैं भी साथ साथ हूँ, क्या बात है, आप भी हमारे साथ साथ हैं.

हजार भाग्य दे, हम भी आपके साथ आ रहे। हाँ जी हाँ जी भाई जान, सादिया के यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आपका शो सुन रही है, नादिया नाम है उसका। वेलकम करो ना नादिया, आपको भी वेलकम कहते हैं और कहती है आप ही। चले कोई बात नहीं। और हिदायतुल्लाह कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आज तो ये सॉन्ग सुनाना है शायद बबर का महबूब तू डिस मुकदर मुझो। यो गानो असा कल वारे शाम वारे प्रोग्राम में बुधो हो से मुखे नवी खबर, पर मु जडी हलारी उठो तो मु खबर पे अच्छा ही तो असा शाम बुधो सी। सो हलाइंदासी कुछ नहीं इंतजार के। अच्छा आबिद बिरोही नौशेरो फिरोज खान से गड मौजूद आए के शो गुड है आपका, थैंक यू। वासा भाई के थे अदी सिडोर जवाब जड़ी आचर गुजरंदो हुयो आई सूमर जी सुबह थींदो हुई अंदर सड़ी वेंदो हुयो स्कूल वनण जे करे सूमर उन ये डियां खां वठी भलो नाए। बिल्कुल बचपन का वठी जेको ना सूमर खां सा के नफरत आए उनन खास करी मानन के जके बाबा कम खां थोड़ो खुश नैन हुंदा पढ़ाई का खुश नैन हुंदा। पूछ मंडी अगर अच्छी छो तो।

क्या बातें, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। दर्दे दिल हमारे साथ माजू दीदी, हेलो स्वीटी। हिदायतुल्लाह कहते वैसे सिद्रा आज मैंने न्यूज सुनी। हाँ मैंने भी कुछ ऐसा सुना था, शायद ये कुछ है उसका लॉजिक पाने के साथ। इसको थोड़ा डीपली मैं समझने की कोशिश करूंगी, फिर आपको समझाऊंगी कि असल क्या पता है, क्या मतलब इस चीज का रीजन है। और हाँ कोई है लिंक जरूर इन दोनों का आपस में। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, आप कैसी ही हो? फाइन सफा मजे में आता बताया किया है। और कहते हैं आचर सदोरो सुमर सड़ियो यू छा ये न क्यों बाबा। बिल्कुल जी, हिकड़ो मानू आ जेको मोती दानो आहे, आई वरी डाडो सुनो आहे। सादिया कहती आप ही प्लीज पोएट्री रीड कीजिएगा। सारे चेहरे वाजे ना कर ए जिंदगी, कुछ लोगों में तो मेरी जान बसती है।

वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो. हुन खां अलावा तव्हां टॉपिक खे फॉलो कयो पिया. सूमर वीचारे जे लाइ सूमर, जेको ॾियारो सूमर आहे, ईअं न त को माण्हू जंहिंजो नालो सूमर हूंदो आहे उनखे तव्हां को जुमिलो चई वियो. अगरि डे जेको आहे मंडे, उन लाइ तव्हांखे को जुमिलो चवणो आहे त उहो तव्हां चई सघो था. बाबा ख़बर पए त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके वीचारे सूमर खां सड़िया वधनि था. ऐं उन खां अलावा इहे हमारे साथ इरम मौजूदी. वालेकुम असलाम दिलबेर आपी, छा हाल आहे? मां सफ़ा मज़े में, तव्हां ॿुधायो. और इहे मौजूदी वालेकुम असलाम आपी, आपका शो वेरी नाइस है. गोठ मोहम्मद तैयब थेबू खां हबीबुल्ला थेबू भाई असांखे जॉइन करे चुको आहे, वेलकम कहते हैं भाई को. और ये मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, मौलाना अस्सलाम मदद, हेलो, हाय, हाउ आर यू? कहते हैं कि मेरा मस्त मंडे, वेरी नाइस. फिर गूगल भाई से जी एफ एम की सुपर आरजे भाव को ज्वाइन किया, शो चलती का नाम मस्ती में. ओके, एंजॉय लाइफ एंड गुड शो. जयपाल भाई आपको वेलकम कहा जाता है. कहते हैं टॉपिक मंडे ब्यूटीफुल डे, मेरे लिए तो क्या बात है मंडे की जनाब. ओके भाव, कराची की क्वीन के लिए एक सॉन्ग, हल्ला गुला सॉन्ग. वैसे भाऊ वो बात, बिल्कुल मैं समझ गई. जयपाल भाई ठीक है. और ये भाऊ हमने इजहार खुशी से मंडे, और हमने कराची में कारोबार भी मंडे, एंड हमारी शादी भी मंडे को होगी, तो थैंक्स मंडे. क्या मतलब, ये सोचकर आपने सब चीजें करी हैं कि बस जो करना है मैंने मंडे के दिन स्टार्ट करना है. वैसे हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई उनके लिए डे जो होता है ना, वो बहुत ऐसा होता है कि भाई हमारे लिए ये डे लकी है, तो वो उसी दिन वो तमाम काम करते हैं. हाँ, हर किसी का अपना अपना थिंकिंग होता है. तो जयपाल भाई ने तो सारे काम मंडे पर किए हैं, तो जयपाल भाई के लिए मंडे तो वो सही है भाई, अच्छा है, गुड डे.

हाँ जी, हसीना पोपड़िया गजब जी छोकरिया दमादम भागने वालों मानी दो, यह तो हकीकत है।

वाह साईं वाह हसी ना के केर माणी दो बाबा और जरी वरी नंडड़ा हुंदा से नी गानो बुदना से पसा चंदा से छो था चवनी त हसी ना के केर मारी दो भोर जरी वडा थे आसी खबर पई त बाबा मारण जी ना मारण जी गाल हले पई आई ने बिनिन में फरक आहे

0: क्या बात है, इसी के साथ साथ प्रोग्राम आप सुनते रहेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। चलती का नाम मस्ती, और यहाँ पर आप लोगों के साथ मस्तियाँ होंगी जनाब। प्रोग्राम में आपका हमारा साथ, और यहाँ पर
1: अब आप सुनेंगे
2: शरीफ चयो आहे त मके गडि॒यल दिफ़ाई मुआदे ते अमेरिकी सदर जे लफ़्ज़नि जी वाखाण कयां थो। सऊदी अरब ऐं तुर्की सां गॾिजी पाकिस्तान पंहिंजो ऐं खिते जो दिफ़ा यकीनी बणाइण में किरदार अदा कंदो रहंदो। ॾखण एशिया में एटमी तबाही जो ख़तरो टारण ते ट्रंप खे भेटा पेश कयां थो। अमुन अवाम जी रोशनी मुस्तक़बिल ज़रूरी ऐं बुनियादी शर्त आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत जे कर्ज़नि में 18,832 अरब रुपयनि जी वाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मूजिब 28 महीननि दौरान वफ़ाक़ी हुकूमत जे मक़ामी कर्ज़नि में 16,766 अरब ऐं परॾेही कर्ज़ में 2,066 अरब रुपयनि जी वाद थी आहे। जून 2026 ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो मजमू कर्ज़ 83,642 अरब रुपयनि ताईं पहुची वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि। वधीक ब दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि पाकिस्तान जे इलाइक़े कुली ज़ाइके में विझी इतला ते ऑपरेशन दौरान 2 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। 3 ज़ख़्मी थिया आहिनि। मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द जी सुञाणप मुश्ताक अहमद उर्फ़ कोयार जे नाले सां थी आहे। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां मैगज़ीन, दस्ती बम ऐं IED ठाहिण जो सामान पिण हथ कयो वियो। तालिबान हुकूमत खिते खे गैर मुस्तक़िम करार ॾियण लाइ प्रोग्रेसिव बणिजी चुकी आहे। गॾियल क़ौम में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार चयो आहे त तालिबान हुकूमत TTP खे महफ़ूज़ पनाहगाहूं, हथियार ऐं माली मदद फराहम करे रही आहे। TTP, PLA, मजीद ब्रिगेड ऐं दाइश जा इलाइक़ाई ग्रुप पाकिस्तान लाइ वॾो ख़तरो आहिनि। सऊदी अरब, तुर्की, चीन ऐं कतर अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में सालसी जूं कोशिशूं करे चुका आहिनि।

अमेरिकी सदर जो ॾखण कोरिया सां फौजी मशकूं महदूद करण जो ऐलान। अमेरिकी सदर चयो त किम जोंग सां सुठनि लाॻापनि सबबि गॾियल फौजी मशकनि में घटिताई चाहियां थो। ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर खे ॾखण सां कोरिया सां मशकूं महदूद करण लाइ हिदायत ॾेई छॾी। पार्लियामेंट अॻवाननि जो मुशावरती इजलास अॼु क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक जी सदारत हेठि थींदो। तर्जुमान क़ौमी असेंबली जो चवणु आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक इजलास अॼु 4 वॻे पार्लियामेंट हाउस में तलब कयो आहे। इजलास में क़ौमी असेंबली जे 29 एजेंडा ऐं पार्लियामेंटी कार्यवाही बाबति मुशावरत कई वेंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मांदली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं. जल्दी का नाम मस्ती ब्रो. और अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं और प्रोग्राम में आप लोगों के लिए जनाब मजे मजे के गाने लगाए जाते हैं, आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं और उनके अलावा मैं सोचने लग गई उनके अलावा जा आप हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि भाई आप मुझे बताएं कि मंडे के लिए आप कोई ऐसा जुमला बोलें जो आपको लगता है कि ये जुमला तो भाई जान मंडे को बिल्कुल परफेक्ट जाएगा. अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं. जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर किया करिए ताकि बहुत सारे लोगों को हम बता सके कि जनाब प्रोग्राम में वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रोग्राम में वो भी हमारे साथ फन कर सकते हैं. तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगता तो बजाहिर ऐसा है कि ये हमारे साथ बहुत वफादार हैं, बहुत अच्छे इनकी जो है ना हमारे साथ बॉन्डिंग है और ये हमारा साथ हमेशा जो है ना वो देने वाले हैं. लेकिन कई मरतबा ऐसा भी सीन हो जाता है कि कुछ लोग जो बजाहिर बहुत अच्छे नजर आते हैं लेकिन जब आगे जाकर थोड़ा वक्त बदलता है, थोड़े जज्बात बदल जाते हैं तो उनका असल जो चेहरा होता है, जो रंग होता है वो सामने आ जाता है. लेकिन ये भी चीज हमें जरा जहन में रखनी चाहिए कि जो एक वफादार इंसान होता है उसकी पहचान क्या होती है. कई मरतबा हम ये सोचने लग जाते हैं कि एक वफादार इंसान डिस्क्राइब करते हैं आपकी भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में जो है ना एक वफादार इंसान, अगर आपको लगता है कि एक वफादार इंसान हमारी लाइफ में मौजूद है तो अगर ये तमाम क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद है तो तब आप यकीन कर लें कि हाँ एक वफादार इंसान वाकई आपकी जिंदगी में मौजूद है. और वो ऐसा ही, क्योंकि वफादार इंसान जो होता है ना वो बस गायब हो जाएगा मगर वो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि कुछ टाइम जैसे ही गुजर जाएगा कभी ना कभी अगर आपकी उससे मुलाकात हो जाएगी तो वो बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा जैसे आपने उसे छोड़ा था. और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि गलतियों पर छोड़ना नहीं बल्कि आपको संभाल लेगा. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अगर आप गलती कर लेते हैं तो आपको छोड़ देते हैं, लेकिन जो वफादार इंसान होगा वो गलतियों पर आपको छोड़ेगा नहीं बल्कि आपको संभाल लेगा और आपको समझाएगा कि ये जो आपने चीज करी है ये गलत करी है और लोगों के सामने आपकी इज्जत बचाने वाला होगा. मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो अगर लोगों के डर से जो है ना वो आपका चाहे कितना ही कोई प्यारा, कितना ही कोई आपसे प्यार करने वाला इंसान हो, उससे आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि भाई ये अगला इंसान तो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसने तो आगे दुनिया के सामने मेरी इज्जत रखनी है. लेकिन जो इंसान आपकी दुनिया के सामने इज्जत नहीं रखेगा ना, तो ये चीज भी बिल्कुल सामने आ जाती है कि वो कभी भी आपके साथ वफादार नहीं है. लोगों के सामने आपकी इज्जत बचाने वाला इंसान ही आपके साथ वफादार होता है. और उसके अलावा जरूरत के वक्त खामोश नहीं होना, क्योंकि अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जब हमें लगता है कि भाई ये दुनिया थोड़ी अजीब सी हो चुकी है, हमें कोई नहीं समझता, या फिर आपको लगता है कि अब जरूरत है हमारे लिए कोई स्टैंड ले, हमारे लिए कोई बोले. तो जो आपके लिए बोले और जो आपके हक में बोले वही आपके साथ वफादार होता है. और कुछ ऐसा भी हो जाता है, कभी आपके पीठ पीछे वो आपका बुरा नहीं बोलेगा, जो आपके लिए बुरा बोलते होंगे उन्हें भी बोलेगा कि भाई आप क्यों ऐसा बोलते हैं, वही आपके साथ वफादार होगा. क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि आपके साथ तो बिल्कुल वैसे होते जैसे भाई ये आपके लिए बहुत कुछ कर दे, लेकिन जब बात यहां से आ जाती है, स्टार्ट होती है कि कुछ लोग आपके बारे में बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो उनके साथ लग जाते हैं, हाँ जी ऐसा ही है ऐसा ही है. लेकिन जो आपके लिए बुरा ना बोले ना बुरा सुने वही आपके लिए वफादार इंसान है और आपका दुख उसका सुकून छीन ले.
क्योंकि अक्सर हमारे लाइफ में कितने ही कोई सच्चे लोग क्यों ना होते हैं, लेकिन अगर आप दुखी हैं और वो खुश हैं तो ये भी बात जरा हजम नहीं होती कि वो आपके साथ वफादार है, क्योंकि आपका दुख जो होगा ना वो उसका दुख होगा, और वफादारी की नीयत जो है ना वो नजर आती है, वो जुबान से और सब साफ साफ वो दिखाई भी देता है। लोग जो भाई ये दिखावा करते हैं कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, आपके साथ वफादार हूँ, वो सिर्फ बातें बोलने की हद तक नहीं, वो कहते ना कि भाई बोलना जो है अगर आप करके दिखाएं तो क्या ही बात हो जाए। बोलने वाले लोग तो बहुत ही ज्यादा हमारी जिंदगी में होते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो वो लोगों के बिहेवियर से हमें मालूम हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की क्वालिटीज आपके पार्टनर के अंदर मौजूद है तो यकीन जानें कि वो बिल्कुल वफादार है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पार्टनर के अंदर तो समझ लीजिए कि भाईजान समझ गए होंगे। अच्छा हिकड़ो डाडो भलो गानो इते लिस्ट में हयो आ, ई गानो सा बुदनासी जीपाल भाई मुखी ने गाने जी फरमाइश करी छड़ी हुई,

की जिंदगी में हला गुला होना चाहिए। आए हाय, जयपाल भाई कहते हैं, हाँ भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टेंशन हमेशा हमने ना किसी को दी है ना ही ली है। ये दोनों चीजें जो है ना वो जरा ऐसी होनी चाहिए कि इंसान जो है ना वो बस ये सोचे कि भाई हमने, अगर आप कोई नेकी भी करते हैं ना तो वो आप किसी और के साथ नहीं करते बल्कि वो अपने साथ करते हैं, क्योंकि उसका जो सिला होगा वो आप ही को मिलता है। बाकी अगर आप नेकी करके दूसरे से उसका सिला मांगते हैं तो ये फिर थोड़ा काम मुश्किल हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है। तो नेकी करें, बस उसे दरिया में फेंकते वाला सीन बनाए।

राजन साइमा मीर हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम अखन जैसी आरजे कैसी है माशाल्लाह। सिद्रा मुस्कान कल किथे हुई शो दम दम आदम मस्त कलंदर है। कल थोड़ो नेटवर्क जो इशू हुयो न वजह से प्रोग्राम कोन कयो सी। बाकी तव्हां लिखियो आ एक मंडे और के बाद तव्हां जो मैसेज जेको आ मिसिंग पार्ट थी वयो आहे। सो थैंक यू सो मच साइमा मीर तव्हां सां सगन मौजूद आयो। मकसूद कहते हैं मेहरापुर से हेलो टाइगर मुस्कान मुझे गाना सुनाना है शमन का। मां कोशिश कयां थी गानो मूंखे मिलियो त हलाए वठूंदा ठीक आहे। और ये हमारे साथ ही जयपाल भाई कहते भाऊ अर्ज किया है जिस शख्स की गलती गलती ना लगे किताबी इश्क की तफसीर में उसे मोहब्बत कहते हैं। या तो सही गाल कही तमाम महबूब की गलती गलती ना ही लगनी पर तेस ताई जैसे शादी न थी थी। उन्हें कहा पोए तो बाबा सही गाल भी गलती लगन दिया।

हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐवे ही आपको छोड़ देती हूँ भाई, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करे। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है अश्वा खोड़ो, आपको वेलकम कहते हैं। और सादिया कहती है टॉपिक हर काम की स्टार्टिंग मंडे से होती है, हर काम की स्टार्टिंग मंडे से होती है, सही सही। और चाचा कहते हैं गाने जी रुकेश टा बिल्कुल तांजो गानों मो डिसीवर तो आए। और कहती आज आपका शो हेडफोन लगाकर सुन रहा हूँ, डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, निधि कहती है आज मैं खाला के घर हूँ और मेरे साथ सब आपका शो सुन रहे हैं, सबको वेलकम करो। चले भाई, सबको सबको सबको वेलकम किया जाएगा। और बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ मौजूद है, ये बहुत ही प्यारा गाना है जो कि आप सबको डेडिकेट जाएगा। तो फिर बस सुनिए जरा गाना।

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं अब वैसा नहीं कि नेकी कर और दरिया में डाल, अब ऐसा है कि नेकी कर और टिकटॉक पर लगा। हाँ ये सही बात है, लेकिन हम तो नहीं चलाते ना टिकटॉक, तो बस हम दरिया में फेंकेंगे लोगों को डालनी टिकटॉक पर। और गुलाम अकबर खास के लिए हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम लाड़काना की कोयल, आप की क्या हाल चाल जी? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं और आपको वेलकम कहते हैं।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

हर साल वध हर साल कीअं वधाए बाबा ॻाल्हि समुझ में न ईंदी आहे आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब शिखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सिकरण मेहरा पर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं जल्दी का नाम मस्ती बिल्कुल तुम्हारी सिद्ध तुम्हारे साथ मौजूद हूँ मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे 888 1 और फेसबुक पर आप अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं।

समझ नहीं आई, शुक्र है वो अब समझ आती है। प्लीज प्ले सॉन्ग तव्हां गानो जेको चयो आहे मां कोशिश कयां थी गानो हलाईंदासीं साइमा। और इरम कहती है यार मेरी और अरीबा की तबियत ठीक नहीं है, सो आप सब दुआ कीजिए हमारे लिए। बिल्कुल जी, आप दोनों के लिए दुआ करेंगे और बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। दुश्मन बीमार करे सजाते हो चवला भुग भुग।

सारे गाने की ये चीज मुझे समझ नहीं आती, हर साल वदाए छा मना। आबिद बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं, आबिद बिरोही भाई आपको वेलकम कहते हैं। नौशीरो फिरोज से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सादिया कहती है आप ही मेरी फ्रेंड को वेलकम करें, और वो जी नादिया है। नादिया जी ये काफी पुराना हो चुका है, बोलते हैं तो उसे क्रिंज लगता है। और कहती है मंडे माय लकी डे बिकॉज उस दिन मैं कॉलेज जाती हूँ और मुझे उस दिन ज्यादा पॉकेट मनी भी मिलती है। वाह साईं वाह, अन्ना तो पॉकेट मनी मिलती है। और अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद, ब्लेस मोहम्मद उस्मान ब्रोही सकरन से कहते अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम गुड, और वेलकम टू सिद्रा मुस्कान अंतहाल जेबा सिद्रा। सॉन्ग सुनाओ जी, शादी वाला गाना सुनाओ। शादी वाला गाना सुनेंगे, केंजी शादी करायो था वेरी। और कहते हैं सिद्रा आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। सिद्रा जी प्रोग्राम 3 घंटे करो, प्रोग्राम 3 कलाक का यहाँ बाकी ब्यार जी शाकंदा पो।

अच्छा कमर जमान बलोच कहते हैं। ओके भाई को वेलकम कहते, थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम, आइए मारिया, हाउ आर यू माय डियर, गुड शो एंड गुड आरजे, थैंक यू वेरी मच मारिया, आप हमारे साथ ही, आपको वेलकम कहा जाता है। और फजीला सिंधी हमारे साथ हैं, फजीला सिंधी क्या कहती है, लिखती है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादे सदरा मस्कान, कैसी हो जानू, मैं ठीक हूँ तुम बताओ, इधर सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को, कहती है सही बोल रही हो डियर, क्या मैंने सही बोला, टॉपिक कहती है स्कूल टाइम मंडे आता था तो यूनिफॉर्म इस्त्री करना भूल जाती थी इसीलिए मंडे बुरा लगता था ना, संडे इतना जल्दी गुजर जाता था ना, पता ही नहीं चलता था, और हम ऐसा करते थे थोड़ा खेल लें थोड़ा खेल लें, फिर ऐसा करते करते पूरा जो ना वो संडे गुजर जाता था, फिर वाकई ये सही बात है, जो काम था मंडे का वो हम सारा भूल जाते, फिर मंडे पर हमें जाकर सुबह सवेरे सारी चीजें याद आ जाती थी, फिर डांट भी खाते थे और काम भी करते थे अच्छा वो तमाम चीजें जो थी उस टाइम हमें कितनी बुरी लगती थी, कितनी बुरी लगती थी, हम कहते हैं बस अल्लाह करे जल्दी से ये टाइम गुजर जाए, हम बड़े हो जाएं, अब वो सब बातें जो चीजें याद करती तो हमें कितना मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही वो तमाम दिन खत्म हो गए, क्यों ही हम

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं सारे ट्रेंड खत्म हो जाएंगे, बस मोलाई और निगहत का ट्रेंड कभी खत्म नहीं होगा। ये मैंने बनाया है ना, इसीलिए मेरे बनाए हुए ट्रेंड कभी खत्म नहीं होते। समझ

0: मात्र गानो बुधोसी वाह साई वाह वाह साई वाह मूसा कोरी भाषा की बुद्धि पयो अदि प्रोग्राम भलो आए थैंक यू वेरी मच। मायरा कहती है सिद्रा आप कॉल नहीं लेती हैं क्या?
1: नहीं नहीं लेती मैं पता नहीं क्यों।
0: और मूसा भात आंजल मोड़ाई हलायोसी ना बुधो हूं तो मजो आयो हो।

अरे चाचा पता नहीं देखेंगे जी। और मूसा कोरी भाई कहते अद्दी सुमर विचारो रोइंदो उंदो लगे ये तो वाकई असांगे भी। अच्छा चाचा कहते हैं कोई इंसान किसी के साथ वफादार नहीं, बस एक पाक साथ अल्लाह पाक ही है, प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। वैसे सही कह रहे हैं पर वो कभी गाल है ना, इंसान इंसान का सवाल है, कुछ भी ना है ना, मतलब पांजे जिंदगी में तवां के मानू हुजन, मतलब सुठो इंसान वफादार इंसान मिलण एकड़ो वडी नेमत होंदी आ मुखे लगंदो अल्लाह ताला जे तरफा। अगर तवां के को सुठो इंसान मिलियो आहे, वफादार इंसान मिलियो आहे, आई उन हिसाब वारो मिलियो आहे जेको मतलब तवां चाहियो पया, त इहा हिकड़ी वडी नेमत आहे अल्लाह साईं जे तरफा। सो उन जो कदर कयो ऐं शुक्र अदा कयो। ऐं कुझु माण्हू वरी ईअं हूंदा आहिनि जेकी अगरि जंहिंजी लाइफ में अहिड़ो इंसान अची बि वेंदो आहे जेको हुननि खे समुझंदो आहे, हुन सां मुहबत कंदो आहे ऐं हुन जी हर हिकु चीज़ जो ख़्यालु रखंदो आहे, पर बदिले में हुन इंसान खे छा मिलंदो आहे, वीचारे खे ॾुखु मिलंदो आहे। सो इहे बि न कंदा कयो। कंहिंजी सुठाईअ जो ऐं कंहिंजे भले अमल जो हुनखे जेको इनाम आहे न, उहो ॾुखनि सां त कॾहिं बि न ॾींदा कयो। तव्हां अगरि ॿियो कुझु नथा बदिले में करे सघो त महिरबानी करे हुननि खे ॾुखु बि न ॾींदा कयो। सो कोशिशि कयो, इहे सभु चीज़ूं मूंखे लॻंदो आहे इंसान जे हथ में हूंदियूं आहिनि। सो ॿियो कुझु न, पर तव्हां कोशिशि त करे सघो था न, बसि कोशिशि कंदा कयो। रशीद खोसो भाउ सां गॾु मौजूदु आहे। वालेकुम अस्सलाम, हैदराबाद खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। ऐं साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ई, मिठो देरो से तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया, सो थैंक यू। हज़ार भाई कहते हैं सिस्टर बिग रिस्पेक्ट आपके लिए, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। हिदायतुल्ला कहते हैं वो वफादार दोस्त मेरे पास है शहबाज, 3 साल एक साथ थे, फिर 1 साल में गांव चला गया, फिर अब वापस आया, वैसे का वैसा ही मिला अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है, कभी भी धोखा नहीं देगा।

अरे सही कहते हैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। गलती नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये चीज करनी या नहीं करनी। तो बिल्कुल वही बात है। अच्छा हैप्पी फाइजा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, सिडर जाने कैसी है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। शो सुपर डुपर है, चलती का नाम मस्ती, माय क्यूट आरजे कहती है कि हैप्पी फाइजा सिडर जाने, मेरे चाचों की शादी है, कल से शॉपिंग में बिजी हूँ, आज हम सब अपने गांव जा रहे हैं। क्या बात है जी, इंजॉय कीजिएगा। वैसे अभी शादियों वाला मंथ जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, हमारी फैमिली में भी 3-4 शादियां होने वाली हैं, तो ये सही है भाई, इंजॉय कीजिएगा। और कहती है हम चाचों की शादी अपने गांव में करेंगे, आपको भी सलाह है चलो हमारे गांव। कौन सा है आपका गांव?

हाँ भाई, तो भली मैं माना कर, पर लगी तो प्यार जेका चले बहुत अच्छा गाना था। अने के अलावा ही वारो सॉन्ग है जो सनी प्रोग्राम टू लास्ट ट्रेक आई टाइम एतरो जल्दी तेजी सा गुजरे पयो खबर ही न पई पवे। अच्छा सो ही एस एस गड प्रेमचंद भाई मौजूद आई, वालेकुम अस्सलाम। रशीद खोजो बात आज मबतुन प्रोग्राम बदो पया मोहम्मद राशिद अवानी के ते प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा जा रहा है, ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रही, आमीन। सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं सादिया तमा गारे जी फरमाइश कया पंज बजे वाली प्रोग्राम में ताजो गानो हलाइना सी मेहताब अली इंदर भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून। अच्छा मायरा कहती है कि मैं मायरा हूँ और मायरा की सिस सनम आपको बहुत लाइक करती हूँ, सिस आपका शो बहुत शौक से सुनती हूँ, आपकी आवाज सुनकर सुकून मिलता है बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू, मेरा आवाज आपको सुकून देता है, सो किसी के लिए तो सुकून का बायस हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा अखलाक भाई आ चुके, अखलाक भाई लास्ट में आए थे, नाइस शो, थैंक यू अखलाक भाई।

अच्छा निदरी कहती मेरी छोटी मासी रिदा भी सुन रही है आज, उसको तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगी, बोल रही है माशाल्लाह। थैंक यू मासी, मौसी जी थैंक यू।

0: ओके जी, सो इसी के साथ ले देंगे आप लोगों से इजाजत, वरी इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाकात थी पई मुंहिंजी। अच्छा फजीला कहती हैं, देखो मैं मुखलिस हूँ ना, 2020 से सुनती आ रही हूँ तुम्हें और एड भी सुनती हूँ तुम्हारे शो के। बहुत शुक्रिया। चलें जी, सो इसी के साथ आप लोगों से इजाजत, वरी इंशाल्लाह तमाम सां मुंहिंजी मुलाकात थिए पई बाबू 5 बजे वारे प्रोग्राम में। सो जिन माण्हुनि पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर नाहे कयो जल्दी कयो, ऐं वरी किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था। जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया आहिनि, जंहिंजा गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सिन सलामत, सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
2: ₹83,600

सिक्योरिटी फोर्सेज हूं बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान खिलाफ कार्रवाई जारी वधिक ब दहशतगर्द मारजी वाया सिक्योरिटी जरिए मूजिब बलूचिस्तान के इलाके गोली जायक में गुझी इतलात ऑपरेशन दौरान ब दहशतगर्द मारजी वाया टे जख्मी थे मारजी वाल एक दहशतगर्द की सुणप मुश्ताक अहमद को यार के नाले से की है दहशतगर्दन के कब्जे में मैगजीन दस्ती बम आई ए ठाण जो सामान पिण हथ किया वो

तालिबान हुकूमत खिते के गैर मुस्तकिम करण लाए पूरा किसी बंदी चुको आहे। गरील कौमन में पाकिस्तान की नुमाइंदी आसिम इफ्तार जो है तालिबान हुकूमत टीटीपी के महफूज पनागाहों हथियार ए माली मदद फराम कर रही है। टीटीपी बीएलए मजीद ब्रिगेडियर दाइश जहा इलाकई ग्रुप पाकिस्तान लाइ वो खतरो है। सऊदी अरब तुर्की चीन ए कतर अफगानिस्तान ए पाकिस्तान विच में सालसी जो कोशिशों कर चुका है।

पार्लियामेंट जे अॻवाननि जो मुशावरती इजलास अॼु क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार आया सादिक जी सदारत हेठि थींदो। तर्जुमान क़ौमी असेंबली जो चवण आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार आया सादिक इजलास 4 वॻे पार्लियामेंट हाउस में तलब कयो आहे। इजलास में क़ौमी असेंबली जे 29 एजेंडा ऐं पार्लियामेंटी कार्रवाई बाबति मुशावरत कई वेंदी। घरू वज़ारत जे मातहत समूरनि सरबराहनि जे घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ जी सदारत हेठि इजलास। घरू वज़ारत जे इदारनि जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं गॾियल राबता मज़बूत करण ते ग़ौर। मोहसिन नकवी चयो आहे त घरू वज़ारत जो कमु ॿियनि वज़ारतनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं ग़ैर मामूली आहे। सभिनी इदारनि खे घुरबल वसीला ॾींदासीं, गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदासीं। सभिनी इदारनि जा सरबराह डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटीअ ते असराइता ऐं गॾियल क़दम यकीनी बणाइनि। तेल, गैस, पेट्रोलियम, बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला सीसीआई में उथारण घुर्जनि। आईनी तरमीम ते मुकमिल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जी डेवल्यूशन कमेटी जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो चयो आहे त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर ट्रस्ट ऐं ज़कवात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबनि ॾांहुं मुंतकिल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबें रुपयनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसी खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते ग़ैर ज़रूरी भार ख़तम करे ख़र्च 109 अरब रुपयनि मां घटाए 130 अरब रुपया कयो वञे। कतल केस में मुआवज़े जी रक़म मुक़रर जो मामिलो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो। जस्टिस हाशिम काकड़ जी सरबराई में बेंच जवाबदार नदीम ख़ान जे अपील ते ॿुधणी कई। प्रोसिक्यूटर चयो त मौजूदा वक़्त में मुआवज़े जी रक़म तकरीबन 1,97,00,000 आहे। जस्टिस अलाउद्दीन रिमार्क्स ॾिना त क़तल करणु थोरो महांगो हुजे त माण्हू कंहिंजो क़तल न कंदा। सऊदी अरब में जो मुआवज़ो 108 ॾियणु आहे। जस्टिस इश्तियाक रिमार्क्स ॾिना त वक़्त ते फ़ैसिलो न थियणु निज़ाम जी ख़राबी आहे ऐं निज़ाम जी ख़राबी जी सज़ा जवाबदार खे नथी ॾेई सघिजे।

0: इसराइल के इंतापसंद वजीर जो गजा में रोजानो 30 का 40 मानू कत्ल करने जो मुतालबो कौमी सलामती के वजीर बिन गेवर है तो इसराइल फौज की हर रात 30 का 40 मानू मारन घुर्जन। इसराइली फौज की ही कार्रवाई सिर्फ खतरे जो सबब बणजंदड़न ताई महदूद न होण घुर्जे। गजा में कुछ अड़ा मानू भी आन जे जीरा रहने के काबिल ना। ईरान के नायब परदेही वजीर है तो इसराइली डोहारन के एतराफन जो हिसाब दिनो वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

वफाकी हुकूमत जे कर्ज़नि में 18,832 अरब रुपयनि जी वाधि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मूजिबि 28 महीननि दौरान वफाकी हुकूमत जे मुआवज़े कर्ज़नि में 16,766 अरब ऐं परडे॒ही कर्ज़ में 2,066 अरब रुपयनि जी वाधि थी आहे। जून 2026 ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो मजमूई कर्ज़ 83,642 अरब रुपयनि ताईं पहुची वियो।

चयो त मके गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदे ते अमेरिकी सदर जे लफ़्ज़नि जी वाखाण कयां थो। सऊदी अरब ऐं तुर्की सां गॾिजी पाकिस्तान पंहिंजो ऐं खिते जो दिफ़ा यकीनी बणाइण में किरदार अदा कंदो रहंदो। ॾखण एशिया में एटमी तबाही जो ख़तरो टारण ते ट्रम्प खे भेटा पेश कयां थो। अमून अवाम जे रोशन मुस्तक़बिल ज़रूरी ऐं बुनियादी शर्त आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान खिलाफ़ कार्रवायूं जारी। वधीक ब दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलोचिस्तान जे इलाइक़े कुलिज़ाइक में कुझु ई इतलाउ ते ऑपरेशन दौरान ब दहशतगर्द मारिजी विया, टे ज़ख़्मी थिया आहिनि। मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द जी सुञाणप मुश्ताक अहमद उर्फ़ कोयार जे नाले सां थी आहे। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां एम्यूनेशन, मैगज़ीन, दस्ती बम ऐं IED ठाहिण जो सामान पिण हथ कयो वियो। तालिबान हुकूमत खिते खे गैर मुस्तक़िम करण लाइ प्रोक्सी बणिजी चुकी आहे। गडि॒यल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार चयो आहे त तालिबान हुकूमत TTP खे महफ़ूज़ बनागाहूं ऐं हथियार ऐं माली मदद फराहम करे रही आहे। TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड ऐं दाइश जा इलाक़ाई ग्रुप पाकिस्तान लाइ वॾो ख़तरो आहिनि। सऊदी अरब, तुर्की, चीन ऐं क़तर अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में सालसी जूं कोशिशूं करे चुका आहिनि। घरू वज़ारत जे माहतेत समूरनि सरबराहनि जो घरू वज़ीर मोहसिन नक़वीअ जी सदारत हेठि इजलास। घरू वज़ारत जे इदारनि जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं गॾियल राब्ता मज़बूत करण ते ग़ौर। मोहसिन नक़वी चयो आहे त घरू वज़ारत जो कमु ॿियनि वज़ारतनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं गैर मामूली आहे। सभिनी इदारनि खे घुर्बल वसीला ॾींदासीं, गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदासीं। सभिनी इदारनि जा सरबराह डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटीअ ते असराइता ऐं गॾियल क़दम यकीनी बणाइनि। तेल, गैस, पेट्रोलियम, बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला CCI में उथारणु घुर्जनि। 18 आइनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जी डिवेल्यूशन कमेटी जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास थियो। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो चयो त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वज़ारत, कल्चर ट्रस्ट ऐं ज़कवात समेत ॿियूं ज़कावतूं वज़ारतूं हफ़्ते अंदर सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि। कमेटी चयो त 18 तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रुपयनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने खे गैर ज़रूरी भार ख़तम करे ख़र्च 190 खरब रुपयनि मां घटाए 130 खरब रुपया कयो वञे।

समुंड दरिया जबल बेट कारूंजर गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं। भले केस दाख़िल कयो, धमकियूं ॾियो, का परवाह न आहे। कराचीअ में दुबई पारां सिंध नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब में क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अलीजो जो ख़िताब। अयाज़ लतीफ़ अलीजे चयो त तरक़ी क़ाबिल धुरियुनि जी दौलत वधाइण लाइ न पर धरती धणियुनि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ हुजणु घुर्जे। कराची सिंध खां धार को सियासी शहर न आहे, पर सिंध जी तारीख़ ऐं वजूद जो हिसो आहे। कराची खे सिंध खां धार करणु ऐं सूबे जे नाले ते सिंध विरिहाइण खे अवाम क़बूल न कंदो।

0: लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम PPHI में जम करण खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कराची में एहतजाज बिलावल हाउस डां मार्च की कोशिश पुलिस खेल रोके छो तलवार से धरणो हणी रोड ब्लॉक अगवाणन सिंध हुकूमत लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के खानगान चाहे थी ए उनो बजट पिण खानगी कंपनी हवाले कर कोशिश कई पई वे मुख्तलिफ जिलन में आयल केतर लेडी हेल्थ वर्कर्स के पुलिस गिरफ्तार कर मुख्तलिफ थान से मुंतकिल कर छो है। भान सैदाबाद लग झांगारा में पीण के पानी जो बोहरान संगीन है। रहवास धरणो झांगारा एक्शन कमेटी के सद से समय गोठान सेवण झांगारा रोड से धरणो है। गोठान जो चवण है कुदरती वसीलन से मालामाल होजन बावजूद झांगारा वासी पानी ला तड़पी रहा है। करोड़े रुपये की लागत से मंजूर थियल आर ओ प्लांट के यूसी चेयरमैन हलायण लाय तैयार ना है। टिन दिन अंदर पानी की खोट खत्म न कई वही तो इंडस हाईवे से धरणो हणंदी। कोटड़ी शहर ए भरपासे में वधंदड़ बदमनी खिलाफ रहवासी सरापा एहतजाज SSP ऑफिस आडो धरणो अगवाणन जो चवण है तो कोटड़ी शहर साइट ए भरपासे वारन इलाकन में फुरू ए चोरियों मामूल बणजी वयूं आहिन। बदमनी सबब शहरी अदम तहफ़ुज़ जो शिकार आहिन। पुलिस अमुन बहाल करण लाए तैयार ना है। अमुन अमान बहाल करायो वने। कलोई लग जंगली जीवत गैर महफूज शिकारी नायाब नसल जा टे हरण मारे छड़ा। गोठ केड़बारो में अणजातल शिकारी नायाब नसल के टिन हरणन के गोलिन जो खाज बणायो। ब हरण सरजमीन ते तड़पी तड़पी मरी वया। एक हरण के गोठाणन जख्मी हालत में हथ करे वरतो। रहवासन जो चवण है तो असा वट जंगली जीवत मुकम्मिल गैर महफूज है। इंतजामिया कदम खणे।
1: सोलर है बैटरी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
6: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014514656 आई तौकीर अहमद 03016023793।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह दहें का शाम पंजे वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: अमान की रोशन मुस्तकबिल जरूरी है, बुनियादी शर्त है। मोहसिन नकवी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सिंध में कड़ी हैसियत है जो नवन सूबन की गाल पा कन। रुगो एक बल्दियाती निज़ाम के बिटो निज़ाम करा दे मानुन सजी सिंध उथलाए छी हुई। असाजा MPS घरन मां भी बाहर न पाया निकरी सकन। या तरमीम असा के वापस वठनी पैजी वही। नवन सूबन की गाल से सजी सिंध उथरी पौंदी ए खौफनाक नतीजा निकरंदा। सिंध विरहण जो गालू कंदड़न के शर्म अचन घुर्जे। जे पान के गड न रखी सकन उ सिंध विरहण जो गालू कर रहा है। जो वण्य करे वठन मां लिखी तो दियां तो सिंध में नवा सूबा न ठांदा।

समुंड दरिया जबलन बेटन गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं, भली केस दाख़िल कयो, धमकियूं ॾियो, का परवाह न आहे। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पली जो दुबई में सिंध नेशनल एक्सीलेंस सेवा तकरीफ़ ख़िताब। अयाज़ लतीफ़ चयो त तरक़ी क़ाबिज़ दौरनि जी दौलत वधाइण लाइ न पर धरती धणनि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ हुजणु घुरिजे। कराची सिंध खां धार को सियासी शहर न पर सिंध जी तारीख़ ऐं वजूद जो हिसो आहे। कराचीअ खे सिंध मां धार नथो करे सघिजे। तेल गैस पेट्रोलियम बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला CCI में उथारणु घुरिजनि। अहिड़ी ही आइनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जे डिवेल्यूशन कमेटीअ जो बैरिस्टर ज़मीर गुमरो जी सदारत हेठि इजलास। ज़मीर गुमरो चयो त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर, एवेक्यू ट्रस्ट ऐं ज़कात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रुपियनि जो नुक़सान पहुतो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी भार ख़तमु करे ख़र्च 190 खरब रुपियनि मां घटाए 130 खरब रुपया कयो वञे।

0: वफाकी हुकूमत जी कर्जन में 18,832 अरब रुपयनि जी वाध। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मूजिब 28 महीननि दौरान वफाकी हुकूमत जी मक़ामी कर्ज़नि में 16,766 अरब ऐं परडे॒ही कर्ज़नि में 2,066 अरब रुपयनि जी वाध थी आहे। जून 2026 ताईं वफाकी हुकूमत जो मजमूई कर्ज़ 83,642 अरब रुपयनि ते पहुची वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। वधीक ब दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलोचिस्तान जे इलाइक़े कुली ज़ाइक में ॻुझे इतलाती ऑपरेशन दौरान ॿिनि दहशतगर्दनि खे मारे वियो। टे ज़ख़्मी थी पिया। मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द जी सुञाणप मुश्ताक अहमद उर्फ को यार जे नाले सां थी आहे। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां एम्यूनिशन, मैगज़ीन, दस्ती बम ऐं AID ठाहिण जो सामान पिण कयो वियो। तालिबान हुकूमत खिते खे गैर मुस्तहकम करण लाइ प्रॉक्सी बणिजी चुकी आहे। गॾियल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार चयो त तालिबान हुकूमत TTP खे महफ़ूज़ पनाहगाहूं, हथियार ऐं माली मदद फराहम करे रही आहे। TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड ऐं दाइश जा इलाक़ाई ग्रुप पाकिस्तान लाइ वॾो ख़तरो आहिनि। सऊदी अरब, तुर्की, चीन ऐं कतर अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में टियाकड़ीअ जूं कोशिशूं करे चुका
1: आहिनि। GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
3: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जेको वणे व करे वठो लिखी तो ॾियां। सिंध में को सूबो न ठहंदो। सिंध में रुगो हिकु मकानी तरमीम थी हुई त अवाम बिटो निज़ाम करार ॾेई सॼी सिंध उथलाए छॾी हुई। असांजा MPS घरनि मां निकिरी बि न पए सघिया। इहा तरमीम असांखे वापसि वठणी पइजी वई ऐं तसवुरु कयो त असां मां कंहिं सूबे जी हिमायत कई त अवाम कहिड़ो हशर कंदो। नवनि सूबनि जी ॻाल्हि जा ख़ौफ़नाक नतीजा निकिरंदा। सूबाई वज़ीर सईद गनी कोरंगीअ में तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त मोहसिन नकवी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टीअ जी सिंध में कहिड़ी हैसियत आहे जो नवनि सूबनि जी ॻाल्हि कनि पिया। सिंध विराइण जी ॻाल्हि टे चार उहे माण्हू कनि था जेके काउंसलर बि नथा थी सघनि। हिक ॿिए खे गोलियूं ऐं कुर्सियूं हणण वारा नए सूबे जी ॻाल्हि कनि था। खेनि शर्म अचणु घुरिजे। जिन खे हिक ॿिए जी शिकिल पसंदि न आहे उहे कंहिंजी चवण ते गॾिजी सूबनि जो मुतालबो कनि था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उमान मथां हमलनि जी धमकी ॾेई छॾी। पासदारान इनकलाब सां सिधी रीति राब्तनि जी बि तस्दीक। मीडिया फोक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू ॾींदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त जेकॾहिं आबनाह होर्मस खोलण जी कोशिशुनि में उमान रुकावट बणियो त अमरीका उन ते सख़्तु बमबारी कंदो। अमरीका वटि अञा बि हथियारनि जा वसी ज़खीरा मौजूदु आहिनि। अमरीका हिन वक़्त ताईं जेतिरा हथियार इस्तेमालु कया उहे मौजूदु हथियारनि जे मजमूई ज़खीरे जी भेट में तमामु घटि आहिनि। हाणे ईरान खे हथियार फिटा करणु ऐं अछो झंडो ऊचो करणु घुरिजे। ईरान सां जारी तकरार ख़तमु करण लाइ का तकड़ न आहे। मुंहिंजी इंतिज़ामिया ईरान जे पासदारान इनकलाब सां सिधी रीति राब्ते लाइ हिकु बैक चैनल बि क़ाइमु कयो आहे।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-5585-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
5: 0301-399-2836।
4: मोहम्मद उमेर गुल, 0319-1550-724।
6: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-335-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8343।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे
1: जो तजुर्बो रखंदड़ माजी के अंदरूनी क्रैकडाउंस में शामिल फौजी आफिसरन के मुकर कयो वयो। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की दावा अखबार की रिपोर्ट मूजिब ईरान में अंदरूनी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के भी वधायो वयो आहे। मिजाइलन ए ड्रोन्स की पैदावार में तेजी आंदी वही उन गडे ईरानी क्यादत आबनाह हुरमस से गिरफ्त मजबूत करण लाय सामुंडी जहाजन खिलाफ कार्रवाई कयूं ए जंग जो दायरो गाढ़ी समुंड तई वधायो।
2: मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, सियासी कारकुन जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। सिंध के अंदर कोई सुबह नहीं कर सकता, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि पूरा सुबह सिंध इस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। बल्दियाती निजाम को लोग जब ये समझ जाए कि ये दौरा है सिंध के मफाद में नहीं है और उसके ऊपर एक इतनी बड़ी तहरीक चले कि हमारे MPs आकर ये कहें लीडरशिप से कि नहीं इसको वापस लें, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते, तो आप तसव्वुर करें कि अगर खुदा ना खास्ता ये सूबे की बात है, पीपल्स पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दें, मैं आप वैसे आर्गूमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, जहाज ही बना दें, तो जो लोग बल्दियाती कानून में तरमीम पर उनको घर से नहीं निकलने दे रहे थे, आप तस्वर कर सकते हैं कि वो कैंसिल करेंगे हमारा। अब वो तीन चार आदमी जो मैंने कल भी जाके कौंसिल नहीं बन सकते यार, नसीब के एमसीएम की आज हसीब के रहेगी, एक मिशी नहीं जी सकते ये, वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंह का मजीद सुबह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब मैं बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए, वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते, गोलियां चला रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं, दूसरे को शक्ल एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, और सुबह सिंध में सुबह बनाने के लिए कोई कट्ठे बिठा देता तो बातचीत शुरू कर देते।
1: जेको वणे व करे वठो लिखी तो दियां त सिंध में को सूबो न ठहंदो। सिंध में रुगो एक मकानी तरमीम थी हुई त अवाम बिटो निज़ाम करार ॾेई सॼी सिंध उथलाए छॾी हुई। असांजा MPs घरन मां निकिरी न पए सघिया, इहा तरमीम असांखे वापसि वठणी पई ऐं तसवुरु कयो त असां मां कंहिं सूबनि जी हिमायत कई त अवाम कहिड़ो हशर कंदो। नवनि सूबनि जी ॻाल्हि जा ख़ौफ़नाक नतीजा निकिरंदा। सूबाई वज़ीर सईद गनी कोरंगीअ में तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त मोहसन नकवी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टीअ जी सिंध में कहिड़ी हैसियत आहे जो नवनि सूबनि जी ॻाल्हि कनि पिया। सिंध विराइण जी ॻाल्हि टे चार उहे माण्हू करे रहिया आहिनि जेके काउंसलर बि नथा थी सघनि। हिक ॿिए खे गोलियूं ऐं कुर्सियूं हणण वारा नए सूबे जी ॻाल्हि कनि था, खेनि शर्म अचणु घुरिजे। जिन खे हिक ॿिए जी शिकिल पसंदि न आहे उहे कंहिंजे चवण ते गॾिजी सूबनि जो मुतालबो कनि था। तेल गैस पेट्रोलियम बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला CCI में उथारणु घुरिजनि। अरिड़हीं आइनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जे डिवलेशन कमेटीअ जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो चयो त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर, एक्वी ट्रस्ट ऐं ज़कात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रुपियनि जो नुक़सानु थियो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी बार ख़तमु करे ख़र्च 190 ख़रब रुपियनि मां घटाए 130 ख़रब रुपया कयो वञे।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460100।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 196 851

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: अपने तरमीम पर उनको घर से नहीं निकलने दे रहे थे। आप तस्वर कर सकते हैं कि वो क्या हासिल करेंगे हमारा। अब वो तीन चार आदमी जो मैंने कल भी जाके कौशल नहीं बन सकते यार, हसीब तो एमसीएम की आज हसीब क्या रहेगी। एक यूसी नहीं जी सकते, ये वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंह का मजीद सुबह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको कुछ शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते, गोलियां चला रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं, दूसरे को शक्ल एक दूसरे से उठना पसंद नहीं करते। और सुबह सिंह सुबह बनाने के लिए कोई इकट्ठे बिठा देता तो बातचीत क्यों कर देते।
1: जेको वणे व करे वठो, लिखी थो ॾियां त सिंध में को सूबो न ठहंदो। सिंध में रुगो हिकु मकानी तरमीम थी हुई त अवाम बिटो निज़ाम करार ॾेई सॼी सिंध उथलाए छॾी हुई। असांजा एम पी एस घरनि मां निकिरी न पए सघिया, उहा तरमीम असांखे वापसि वठणी पई ऐं तसवुरु कयो त असां मां कंहिं सूबनि जी हिमायत कई त अवाम कहिड़ो हशर कंदो। नवनि सूबनि जी ॻाल्हि जा ख़ौफ़नाक नतीजा निकिरंदा। सूबाई वज़ीर सईद गनी कोरंगीअ में हिकु तक़रीब खे ख़िताबु कंदे चयो त मोहसन नकवी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टीअ जी सिंध में कहिड़ी हैसियत आहे जो नवनि सूबनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध विरिहाइण जी ॻाल्हि टे चार उहे ई माण्हू कनि था जेके काउंसलर बि नथा थी सघनि। हिक ॿिए खे गोलियूं ऐं कुर्सियूं हणण वारा नई सूबे जी ॻाल्हि कनि त खेनि शर्म अचणु घुरिजे। जिन खे हिक ॿिए जी शिकिल पसंदि न आहे उहे कंहिंजे चवण ते गॾिजी सूबनि जो मुतालबो कनि था। अमरीकी सदर जी मके दिफ़ाई मुआदे जी हिमायत ते वज़ीर आज़म पारां ट्रंप जी वाखाण। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त मका गॾियल दिफ़ाई मुआदे ते अमरीकी सदर जे लफ़्ज़नि जी वाखाण कयां थो। सऊदी अरब ऐं तुर्की सां गॾिजी पाकिस्तान पंहिंजो ऐं खिते जो दिफ़ा यकीनी बणाइण में किरदारु अदा कंदो रहंदो। ॾखिण एशिया में एटमी तबाहीअ जो ख़तरो टारण ते ट्रंप खे भेटा पेश कयां थो। अमान जी रोशन मुस्तक़बिल ज़रूरी ऐं बुनियादी शर्त आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओमान मथां हमलनि जी धमकी ॾेई छॾी। पासदारान इनकलाब सां सिधी रीति राब्तनि जी बि तस्दीक। मीडिया फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू ॾींदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त जेकॾहिं आबनाह हुरमस खोलण जी कोशिशुनि में ओमान रुकावट बणियो त अमरीका हुन ते सख़्तु बमबारी कंदो। अमरीका वटि अञा बि हथियारनि जा वसी ज़ख़ीरा मौजूदु आहिनि। अमरीका हिन वक़्तु ताईं जेतिरा हथियार इस्तेमालु कया उहे मौजूदु हथियारनि जी मजमूई ज़ख़ीरे जे भेट में तमामु घटि आहिनि। हाणे ईरान खे हथियार फिटा करणु ऐं अछो झंडो ऊचो करणु घुरिजे। ईरान सां जारी तकरार ख़तमु करण लाइ का तकड़ि नाहे। मुंहिंजी इंतिज़ामिया ईरान जे पासदारान इनकलाब सां सिधी रीति राब्ते लाइ हिकु बैक चैनल बि क़ाइमु कयो आहे।

इस्लामाबाद में एमओयू ते सही थियण खां पोइ ईरान जी सख़्त गीर क़यादत गुज़िरियल ॿिनि महीननि दौरान वॾी जंग जी तयारीअ ते ध्यानु ॾिनो। उन तयारीअ जे सिलसिले में पासदारान इनकलाब खे मुल्क जी फ़ौज ते वधीक कंट्रोल ॾिनो वियो, जॾहिं त अहम उहिदनि ते इराक जंग जो तजुर्बो रखंदड़ ऐं माज़ीअ जी अंदरूनी क्रैकडाउन्स में शामिलु फ़ौजी आफ़िसरनि खे मुक़ररु कयो वियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा अख़बार जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान में अंदरूनी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स खे बि वधायो वियो। मिज़ाइलनि ऐं ड्रोन्स जी पैदावार में तेज़ी आंदी वई। उन सां गॾु ईरानी क़यादत आबनाए हुर्मस ते पंहिंजी गिरफ़्त मज़बूत करण लाइ सामूंडी जहाज़नि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं कयूं ऐं जंग जो दायरो ॻाढ़े समुंड ताईं वधायो। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जी सुधारनि ऐं इस्लामाबाद आई टी पार्क बाबति इजलास। वज़ीर आज़म पारां नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड खे शहरनि लाइ आसान, असराइती ऐं जदीद डिजिटल ख़िदमतूं फराहम करण ते ख़ासि ध्यानु ॾियण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त शहरनि खे बर वक़्त शफ़ाफ़ ऐं आसान डिजिटल ख़िदमतूं फराहम करण लाइ समूरनि लाॻापियल इदारनि खे गॾिजी कमु करणो पवंदो। शहरनि खे सरकारी ख़िदमतूं हासिलु करण में सहूलियत फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। तेल, गैस, पेट्रोलियम, बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला CCI में उथारणु घुरिजनि। अणिही आइनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जे डिवोल्यूशन कमेटीअ जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास। ज़मीर घुमरो चयो त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर, अवेक्यू ट्रस्ट ऐं ज़कात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अणिही तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रुपियनि जो नुक़सानु थी रहियो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी वार ख़तमु करे ख़र्च 190 ख़रब रुपियनि मां घटाए 130 ख़रब रुपया कयो वञे।

0: समुंड दरिया जबलन बेटन गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं, भली केस दाख़िल कयो, धमकियूं ॾियो, का परवाह नाहे। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पली जो अॼु दुबई में सिंध नेशनल एक्सलेंस अवार्ड तक़रीब खे ख़िताब। अयाज़ लतीफ़ चयो त तरक़ी क़ाबिज़ धुरनि जी दौलत वधाइण लाइ न पर धरती धड़नि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ हुजणु घुरिजे। कराची सिंध खां धार को सियासी शहर न पर सिंध जी तारीख़ ऐं वजूद जो अणटुट हिसो आहे। कराचीअ खे सिंध खां धार नथो करे सघिजे। सेनेट में मामूल जी कार्रवाई मुअतल, पीटीआई बानी जी सेहत ते बहस करायो वियो। पीटीआई मेंबर्स पारां पंहिंजी बानी जी सेहत बाबति गणती ज़ाहिर। जेल खां ॿाहिरि इलाज जूं सहूलियतूं फराहम करण जो बि मुतालबो। अपोज़िशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास चयो त बानी पीटीआई जी सिहत बाबति सूरतहाल घणती जोगी आहे, खेसि जेल में ज़हनी अज़ियत ॾिनी पई वञे। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि बाबति सलाहकार राणा सनाउल्ला जवाबु ॾींदे चयो त जेको शख़्स अदालती कस्टडीअ में हुजे, छा उन जी इलाज ज़िमेवार हुकूमत हूंदी। पीटीआई जे मिशाल यूसुफ़ज़ई चयो त बानी सिहत इंसाफ़ कार्ड ज़रिए 43 मिलियन ख़ानदाननि खे सिहत जूं सहूलियतूं फराहम कयूं, पर अॼु पाण पंहिंजे इलाज जो मुतालबो करे पियो। राणा सनाउल्ला ॿुधाए त बानीअ जी ज़िंदगी जी ज़मानत केरु ॾींदो। हुकूमती सेनेटर अब्दुल क़ादिर मामले जे हल लाइ ॻाल्हियुनि जी सलाह ॾेई छॾी। वफ़ाक़ी हुकूमत जी कर्ज़नि में 18,832 अरब रुपियनि जी वाधि। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मूजिबि 28 महीननि दौरान वफ़ाक़ी हुकूमत जी मक़ामी कर्ज़नि में 16,766 अरब ऐं परॾेही कर्ज़नि में 2,066 अरब रुपियनि जी वाधि थी। जून 2026 ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो मजमूई कर्ज़ 83,642 अरब रुपियनि ते पहुची वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नज़्द रेलवे लाइन, मेहरापुर। राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0305-925-120।
5: अदा
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न? अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1558-724।
8: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते, गोलियां चला रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं, दूसरे को शक्ल एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, और सुबह सिंध सुबह बनाने के लिए कोई कट्ठे बिठा देता तो बातचीत क्यों कर देते।
2: जेको वणे व करे वठो, लिखी थो ॾियां त सिंध में को सूबो न ठहंदो। सिंध में रुगो हिकु मकानी तरमीम थी हुई त अवाम बिटो निज़ाम करार ॾेई सॼी सिंध उथलाए छॾी हुई। असांजा एम पी एस घरनि मां निकिरी न पए सघिया, उहा तरमीम असांखे वापसि वठणी पई ऐं तसवुरु कयो त असां मां कंहिं सूबनि जी हिमायत कई त अवाम कहिड़ो हशर कंदो। नवनि सूबनि जी ॻाल्हि जा ख़ौफ़नाक नतीजा निकिरंदा। सूबाई वज़ीर सईद गनी कोरंगीअ में हिकु तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त मोहसिन नकवी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टीअ जी सिंध में

अहिड़ी हैसियत आहे जो नवनि सूबनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध विरण जी ॻाल्हि टे चार उहे ई माण्हू कनि था जेके काउंसलर बि नथा थी सघनि। हिक ॿिए खे गोलियूं ऐं कुर्सियूं हणण वारा नए सूबे जी ॻाल्हि कनि त कंहिं शर्म अचणु घुर्जे। जिन खे हिक ॿिए जी शिकिल पसंदि न आहे उहे कंहिंजे चवण ते गॾिजी सूबनि जो मुतालबो कनि था। अमरीकी सदर जी मके दिफ़ाई मुआदे जी हिमायत ते वज़ीर आज़म पारां ट्रंप जी वाखाण। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त मका गॾियल दिफ़ाई मुआदे ते अमरीकी सदर जे लफ़्ज़नि जी वाखाण कयां थो। सऊदी अरब ऐं तुर्कीअ सां गॾिजी पाकिस्तान पंहिंजो ऐं खिते जो दिफ़ा यकीनी बणाइण में किरदार अदा कंदो रहंदो। ॾखिण एशिया में एटमी तबाही जो ख़तरो टारण ते ट्रंप खे भेटा पेश कयां थो। अमान जी रोशन मुस्तक़बिल ज़रूरी ऐं बुनियादी शर्त आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओमान मथां हमलण जी धमकी ॾेई छॾी। पासदारान इनकलाब सां सिधी रीति राब्तनि जी बि तस्दीक। मीडिया फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू ॾींदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त जेकॾहिं आबनाए हुरमत खोलण जी कोशिशुनि में ओमान रुकावट बणियो त अमरीका उन ते सख़्तु बमबारी कंदो। अमरीका वटि अञा बि हथियारनि जा वसी ज़खीरा मौजूदु आहिनि। अमरीका हिन वक़्त ताईं जेतिरा हथियार इस्तेमालु कया उहे मौजूदु हथियारनि जी मजमूई ज़खीरे जे भेट में तमामु घटि आहिनि। हाणे ईरान खे हथियार फिटा करणु ऐं अछो झंडो ऊचो करणु घुर्जे। ईरान सां जारी तकरार ख़तमु करण लाइ का तकड़ न आहे। मुंहिंजी इंतिज़ामिया ईरान जे पासदारान इनकलाब सां सिधी रीति राब्ते लाइ हिकु बैक चैनल बि क़ाइमु कयो आहे।

इस्लामाबाद में एमओयू ते सही थियण खां पोइ ईरान जी सख़्त गीर क़यादत गुज़िरियल ॿिनि महीननि दौरान वॾी जंग जी तयारीअ ते ध्यानु ॾिनो। उन तयारीअ जे सिलसिले में पासदारान इनकलाब खे मुल्क जी फ़ौज ते वधीक कंट्रोल ॾिनो वियो, जॾहिं त अहम उहिदनि ते इराक जंग जो तजुर्बो रखंदड़ ऐं माज़ीअ जी अंदरूनी क्रैकडाउन्स में शामिल फ़ौजी आफ़िसरनि खे मुक़ररु कयो वियो। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा अख़बार जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान में अंदरूनी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन खे बि वधायो वियो। मिज़ाइलनि ऐं ड्रोन्स जी पैदावार में तेज़ी आंदी वई। उन सां गॾु ईरानी क़यादत आबन हुरमस ते पंहिंजी गिरफ़्त मज़बूत करण लाइ सामूंडी जहाज़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं कयूं ऐं जंग जो दायरो ॻाढ़े समुंड ताईं वधायो। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जी सुधारनि ऐं इस्लामाबाद आई टी पार्क बाबति इजलास। वज़ीर आज़म पारां नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड खे शहरनि लाइ आसान, असराइती ऐं जदीद डिजिटल ख़िदमतूं फराहम करण ते ख़ासि ध्यानु ॾियण जी हिदायत। शहबाज शरीफ़ चयो त शहरनि खे बर वक़्त शफ़ाफ़ ऐं आसान डिजिटल ख़िदमतूं फराहम करण लाइ समूरनि लाॻापियल इदारनि खे गॾिजी कमु करणो पवंदो। शहरनि खे सरकारी ख़िदमतूं हासिलु करण में सहूलियत फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। तेल, गैस, पेट्रोलियम, बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला सीसीआई में उथारणु घुरिजनि। अणिहीं आइनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जे डिवोल्यूशन कमेटीअ जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास। ज़मीर घुमरो चयो त सिहत, तालीम, उसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर, अवेक्यू ट्रस्ट ऐं ज़कात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अणिहीं तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रुपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी वार ख़तमु करे ख़र्च 190 ख़रब रुपियनि मां घटाए 130 ख़रब रुपया कयो वञे।

0: समुंड दरिया जबलन बेटन गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं भली केस दाख़िल कयो धमकियूं ॾियो का परवाह नाहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जीए एफएम 94।